0: कि एक समय तानव बह गए बाल में माता से तक फल नौ ने बोले अफेट जो रहता साउदी बाकुंडा से ने पूजा बत्ती ने पिसल
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.